तु पल्लुलैः कस्मिन् शर्मि औक्तस् ते कलकः मत्यद्वारमुचुभूमीन् यदुफमुहताम्पै विवारयलिमीन् यपुहमीन् औरमुहित् हेरकुलाशिमि यस्वस्तिः यस्तु लोहपमेह तुम्राः किस्वदतीति आमेन् अह् चिमि तोङ्गुहतिलः अल्मिस् पशुः वस्तु नम्म पोहतुस्तु रीक शब्दस्तु तहतु मुहल्मिस्तु मैत्तै एनमल्ते अतिमिच्चियों निमि बैवाल श्लाय पामेत अतिमिच्चिदिमि सुत्तु इदमे अंतकसि नुखकुमि किस अंतकसि अधिमि बिल्कुल चैता सामेत अले तो अल्बमि गह चलो साई सीसा मुक्तो पैस्ते में पहा सेरे तस्कुलूलरी कफा मुहिया गुन्नी आमेन ते साबमि पुहकुल तले जिये पूरे पैज भी इक मिल पूरे सेव ना दो साब